से कोई ना वो ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

त्रिपवन महीप सुर नर असुर नीत नीत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत दर्शन प्यासी दिन सरात चितवाओ अन दिन नीत हो।

सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया ते सम्मोहन लाल प्यारी हाओ फिराओ खोजंतिया।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पहरो वह करही पंच रागनी संग उच रही प्रथम पहरवी बिलावली पुनिया की गावे मंगली पुनस लेखी की भई बारी ए पहरों की पांचों नारी पंचम हरक।

सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी कारी मुलक निंदा समस्त निवासी अजाय भेभूते गजाय गनी मे हरि अंकरि मूल रही मे चात्र जगरवर्ती चात्र भुगते स्वयं भाव सुभंग।

अलख पुरग अवगत अवधूता जात पात जह चह न भरना अवगत देव अक्षय अन भरमा सबको काल सबन को करता रोग सोग दोकन को हरता एक चेत जह एक छिन्न ध्यायो काल फांस के बीच न आयो। तो प्रसाद कबित कत हूँ सुचेत हो के चेत ना को चार कियो कत हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो कत हूँ भिकारी हो के मांगत फिरत भी कहूँ माँ दान हो के मांगे धन देत हो कहूँ माँ राजन को दीजत अनंदान कहूँ माँ राजन ते छीन छेत लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जाच गंधर्व उरक कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो कहूँ होय के हिंदुआ गायत्री को गुपत जपे हो कहूँ होय के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूँ कोब का होय के पुराण को पढ़त मद कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान कहूँ दान बान को गुमान मत देत हो कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो कतहूँ विचार विचारत को विचारत हो कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ शास्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत हारी कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिटानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो कहूँ धर्म धामी कहूँ सरब ठौर कामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तासु विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होय पतारे कहूँ भूख भूख पावन को पृथ्वी पर धरत हो कतहूँ सिपाही हो के साधत सिलाहन को कहूँ क्षत्रिय ग्यार मारत मरत हो कहूँ भू भार को उतारत हो महाराज कहूँ भव भूतन की भावना भरत हो कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत हो कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो कतहूँ पयुग हो के पीवत पीवावत हो कतहूँ मयुग कहूँ मद पान हो कहूँ मासूर हो के मारत मवा

कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन पर्यंक कहूँ शुद्धता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतत कुकरम कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पवन हरि कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो कहूँ छत्रधारी कहूँ छाला धरे छल भारी कहूँ छक्केवारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजया कहूँ नृत्य के नचा कहूँ नर को आकार हो कहूँ वेद मानी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजया कहूँ धेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दो की निरंकार हो निर्जोर निरूपों के सुंदर स्वरूपों के भूपन के भूपों के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया की दो मानी महामान हो विद्या के विचारों के अद्वैया अवतारों के शुद्धता की सूरतों के शुद्धता की शान हो जोबन के जालों के कालों के गालों के सतरन के झूलों के मित्रन के प्राण हो कहूँ ब्रह्म बात कहूँ विद्या को विखल कहूँ नान को ननार कहूँ पूरन भगत हो कहूँ बेदरीद कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वालासी जगत हो पूरन प्रताप कहूँ।

सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो तो प्रसाद सबये। श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिर घर जोग जति के सूर सुराधा सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा होते एक रत्ती पिंड एक रत्ती के माते मतंग जरे जड़ संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूपली बन न्यावासीसना ज्ञात विचारे एते भय तो कहाँ भय भूपदान को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृतांग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूपद कौन कने नहीं जात विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथन हंद आदम दानसो संजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पेख है पौन हार जति जंधार सब सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है सोध सुपा दुरंत वास सास सुना दुर्जान दलांगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़े आर विचार सार की धार बछैया तोरा देश मलिन मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ाने के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नाग जाचन एक सोक दिवैया दानव देव फनी निशाचर भूत भगवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाय धुन पापन के पुंज खपेंगे साल समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब लोग छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र राधव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान जाति स्वयं साज भरेंगे ब्रह्म सर भीषण सचिव अदंत फसे जम फांस भरेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन बूंद के बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो नाद प्रिय लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो बास की अभिख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैठ बितायो साचे कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धर्यो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लखे हो रवाची दिशा में है काहू पछाह को शीश निवायो को उबतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन धायो पूर क्रिया और जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो तोमर तो छंद हर जन्म मरण विहीन दाचार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछेद तेज उदार अनभेज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान दाचार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक वितार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापियो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुखचार बकत बेअंत अनभेज अतुल प्रताप अनखंड अमित थाप जय कीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूपा खंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कह ब्रह्म विषण विचार कह राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिन नगेंद्र कई मज कज फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विष्ण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुचार कई रुद्र शुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कौ कत ही सो पुराण
कई अगन होत्र करंत कई उर्ध ताप दुरंत कई उर्ध भाव संन्यास कहूं जोग भेष उदास कहूं नीवली कर्म करंत कहूं पवन हार दुरंत कहूं तीरा दान पार कहूं जग करम उदार कहूं अगन होत्र अनूप कहूं न्याय राज विभूत कहूं शास्त्र सिमरत रीत कहूं वेद स्यों विपरीत कई देश देश फिरंत कई एक ठौर संत कहूं कर जल में जाप कहूं सहतन प्रताप कहूं बाज बने करंत कहूं ताप तनह सहंत कहूं ग्रस्त धर्म पार कहूं राजरीत उदार कहूं रोग रहत भरम कहूं कर्म करत अकर्म कहूं शेख ब्रह्म स्वरूप कहूं नीत राज अनूप कहूं रोग शोक विहीन कहूं

खू कमल हरी गज गदहा विभू धारी के दुआ मसान वास करोई करत है। घुगुमट वासी लगे डोलत उदा सिमरिक तरवर सदयू मोन सदे मरत है। बिंद के सदयता हीर की बड़ैया देत बंदरा सदयू पाए न गई फिरत है। अंगन अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के भीन छीन कैसे के तरत है। भूत बन चारी छेद छौना सभ्य दूताधारी पवन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया वृक भैया मानियत है। नव के उड़ैया ताए पंछी की बड़ैया देश बगला बिटाल ब्रेक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना है ऐसे ना प्रपंच मन भूलानियत है। भूम के भसैया ताए भूचरी के जैया कहे नव के उड़ैया सो सिरैया के बखानी है। फल के भचैया ताए बांधी के जैया कहे आदित फिरैया दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आके भचैया सो चकोर सम्मानी है। सूरज सिवैया ताए कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिया है। नारायण कच्छ मेंदुआ कह सब कौल नाभ कौल जय ताल में रहते है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन जारी रिखी के नाम के महंत लही अत है। माधव भवर ओ अटे रुको कन्हैया नाम कंस को बदैया जम दूध कही अत है। मूड रूट पीटत ना गुणता को भेद पावे पूजन न ताहे जाके राखे रही अत है। विश्ववाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहते है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काल भोग प्या देह पर सहते है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठाडे न बहते है। मानो फनी देव दानो न पावे भेद भेद अकतेव नेत नेत के कहते है। नाचत फेरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे वही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूमि को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक फेर भय रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समोन के होए होए बिताए है। मोंदी मदार के ते अंसनी कुमार के ते अंसावतार के ते कालपद भय है। पीरा पैगंबर के ते गणे न परते ते भूमि ते कोई फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कहीं कोसलो चलते है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरते बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से मही पाओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करते है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूमंद भूम में मिलते हैं। सिद्ध दे करे अनेक तोपची कपड़ भेष पोस्ती अनेक दा निवावत है शीश का। कहा भयो मल जो पकड़ दे अनेक दंड सोतना डंडा दस टांग तीस का। कहा भयो रोगी जब डारो रे उर्द भोग मानते ना मुंड निहरायो आज इसका। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना भीन कैसे पावे जगदीश का। शीश पटकत जाके कान में खजूरा दसे मूंड छटकत मित्र पुत्रों के शोक सा। आँख को बचरैया फल फूल को बचैया सदा भन्न को भ्रमैया और दूसरों ना भोग सा। कहाँ भयो भेड़ जो घसा सिर प्रछन सो माटी को बचैया बोल पूछ नीचे जोग सा। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कैसे भिटे पर लोग सा। नाचोई करत मोर दादर करत सोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठाडे सदा वन में राहत ब्रिज फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठार बास करे काग और शील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजे लीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो गया बैरागी बने कब हूँ संन्यास भेद बन कर दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे धारी दंड कहूँ दंड धारियों के लोगन भ्रम आवई। कामना अधीन परे नाचत है नाचन सो ज्ञान के भीन कैसे भ्रम लोग पावई। पांच बार गीदर पुकारे परे शीत काल कुंचर गदहा अनेकदा पुकार ही। कहा भयो जो पे कलवत्र लियो कांसी भी ची ची चोरठा कुठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फास्ट मार मार डार ही।
डूबे नरक थार मोड़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पे पाई है तापना तापना अनेक तन घायल सहते है जाप के किए जो पे पाई है जाप देव कूदना सदी तुही उचरते है नव के उड़े ते जो पे नारायण पाई अनकल नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाई अनल आकाश पंछी डोलबो करते है आग में जरते गत रांड की परत कर पताल के वासी की भुजंग न तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जतियन मानबो हिंदू तुरा को रावजी मान सभी मानस की जात सब के पहचान बो करता करीम सोई राजक रहीम होई दूसरो न भेद को भूल भ्रम मानबो एक ही सेव सब ही को गुण देव एक ही स्वरूप सब के जो जानबो देव राम आशीष होई पूजा अनिवाज होई मान सब एक बयान एक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे हो देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक दान एक दान के बाद खाक बाद आता सो आपको रलाव है अल्लाह भेग सोई पुराना कुरान होई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे आगते कनुका गोड आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कण का फेर धूर ही समाहेंगे जैसे एक नत्ते तरंग को डूब जाते पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते ऊपर सब ताही में समाहेंगे केते काछ मज के दे उनको करत भच्छ केते आछे बच होए सपाछ उड़ जाएंगे केते ना बीज आज पाज को करेंगे भज केते प्रत्यज हो बचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे तेज युवा तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते ऊपर सब ताही में समाहेंगे कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केते उदासी की भरमाए फिरत है करवा सहद केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुखा भरत है ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के बिहीन जग जारी मरत है शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार पूज हारे पाहने चढ़ाए हारे लाभसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब भज हरे पंडित तपंत हरे तापसी तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जनमंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा बाता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं न अवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैखंग अभेखंग जूनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आदत में अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटाए उपाए उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभय आदे अद्वै विनाशी परेयंग परापरन पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्यादे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाते उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भवि के भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंकंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग अभूतंग अभेकंग ना सत्रंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अछे आदत व अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधंग ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग
ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भर्मंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भर्मंग सदैवं सदा सिद्ध प्रतंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अच्छे आद अभिक्ते अथापे विभुक्तंग अच्छे आद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना शोकंग ना साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भर्मंग ना सर्मंग ना साके ना भर्मंग ना चर्मंग ना कर्मंग ना बाके ना सत्रंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कांज के मंज के धर्म भूले कहूं कांज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाजता में कहूं अक्षर के पक्षर के सिद साधे कहूं सिद्ध के बद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चेतर रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं ने गृहं कहूं देह दोखं औखदि रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साध की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग युक्तं कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट कन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम वाणी कहूं को की काम कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं शुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव्य रूपं कहूं चेष्टा चार्चितं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेकं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्धावस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जनारा देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग्रहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागंग कहूं रोग हरता कहूं भोग त्यागंग कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पैलवी पश्चवी संस्कृति हो कहूं देद भाग्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी।

कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारू गुड़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूँ छाल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजा राजाधिकारी कहूँ राज साजंग राजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछे आद अलव विधाता न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते। तो प्रसाद पादरी छंद अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अनास अनतुट तेज अनखुंड भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अनशेद गाद करता सदी हरता सनात आसन ढोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्राद नहीं मित्र मात जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योतपान जय जात पार नहीं सत्र मित्र जय ने गे ने चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम फेक जय कर्म भरम नहीं जात पार नहीं ने गे ने पितृ मात जय नाम थाम नहीं बरक ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र सात जय त्रासवाद नहीं दे ना जय आदंत नहीं रूप रात जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आद नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत बे जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन डोल जय मितेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलप एक साधंत तुरंत तन शीत घाम पर खास हंत कई कलप एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधन तथा पावत न पार कई उर्द पादेशन भ्रमंत कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमरे शास्त्र उचरंत वेद कई कोप काद कथत कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत कोट मृत गो आहार कई करत साग पै पत्र भक्ष नहीं तदप दे होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग आद कर्म कहूँ अगन होत्र कहूँ तीर धर्म कई देद भाखा रटंत कई देद विद्या पढ़ंत कई करंत भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरा तीरत भरम सो भरम कई अगन होत्र कई देव कर्म कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचरत सो कर्म निवली आद कर्म कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मक्खो बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्धचार कहूँ करत जज गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कहीं भजत एक भग निराधार कई नेह दे कई गेह वाद कई भ्रमत देश अनुदान कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पम प्रजन नहीं तदप तस पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप देश देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव करत होम अर जगदान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्वधर्माभिहीन। सब प्रसाद तोटक छंद जय जंपो हो जुगण जुह जुअंग भय कंपो हो मेर पयाल भुअंग ताप सर्व जलेर थलंग धन इचरत कुंद इंद्र कुमेर बलंग अन खेद सरू अभेद अभयंग अन खंड अभूत अछेद अछियंग अन काल पाल दयाल स्वंग जय ठटिय मेर काज भुअंग अन खंड अमंड प्रचंड रंग जय रचियंग देव अदेव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय रागना रूपना रेख रुखंग जय तापना सापना स्वाह सुखंग जय रोगना सोगना भोग भुवंग जय खेदना भेदना छेद छयंग जय जातना पातना माध पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय रागना रेखना रोग भणंग जय द्वैखना दागना दो गणंग जय अंडा ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रसाम तेज अतेज कियो अनुभव पाद आ प्रचंड लियो श्रिय सिंदर विंद नगिंद नगन श्रिय श्रिय जाच्छ गंधर्व फणिंद भुजंग रच रोज देव देव रच देव अदेव भेव नरंग नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उज भुजंग किए देव अदेव सराज पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातना पातना जो दुचंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भुवंग जय जंप किन्नर जच जुवंग
ਨਾ ਨਾ ਨਪੁੰਸਕ ਜਾਇ ਕੀਏ ਗਣ ਕਿੰਨਰ ਜਜ ਭੁਜੰਗ ਦੀਏ ਗਜਬਾਦ ਰਥਾਦਿਕ ਪਾਂਤ ਗਣ ਭਵ ਭੂਤ ਭੁਗ ਭਵਾਨ ਤੁਆਂ ਜੈ ਅੰਡਾ ਜ ਸੇ ਤਾ ਜੇ ਰਜਨ ਰਜ ਭੂਮ ਅਕਾਸ ਪਤਾਲ ਜਲੰ ਰਜ ਪਾਵਕ ਪਾਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲੀ ਬਨ ਜਾਸ ਕੀ ਉਹ ਫਲ ਫੂਲ ਕਲੀ ਭੋ ਮੇਰ ਅਕਾ ਨਿਵਾ ਛਿਤੰਗ ਰਜ ਰੋਜ ਕਾ ਦਾ ਚੰਦਰ ਬਿਤੰਗ ਦੁੱਧ ਛੰਦ ਦਿਨੀ ਸਾ ਦੀਪ ਦਈ ਜੈ ਪਾਵਕ ਪਾਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਈ ਜੈ ਅਖੰਡ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੀਏ ਜੈ ਛਤਰ ਉਪਾਏ ਛਪਾਏ ਦੀਏ ਜੈ ਲੋਕ ਛਤਰ ਚਾਰ ਰਚੇ ਨਰ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸਚੇ ਅਨ ਧੂਤ ਅਭੂਤ ਅਛੂਤ ਪਤੰਗ ਅਨ ਗਾਧ ਅਭਿਆਦ ਅਨਾਦ ਗਤੰਗ ਅਨ ਖੇਦ ਅਭੇਦ ਅਛੇਦ ਨਰੰਗ ਜੈ ਚਾਰ ਛਤਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰੰਗ ਜੈ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਗ ਰੁਖੰਗ ਜੈ ਸੋਗ ਨਾ ਭੋਗ ਨਾ ਜੋਗ ਜੁਗੰਗ ਭੋ ਭੰਜਨ ਗੰਜਨ ਆਦਿ ਸਿਰੰਗ ਜੈ ਬੰਦਾ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਨਰੰਗ ਗਣ ਕਿੰਨਰ ਜੈ ਭੁਜੰਗ ਰਛੇ ਮਣ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸੁਚੇ ਅਨ ਭੰਜ ਪ੍ਰਭਾ ਅਨ ਗੰਜ ਬ੍ਰਿਤੰਗ ਜੈ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵਤ ਪੂਰ ਮਤੰਗ ਅਨ ਖੰਡ ਸਰੂਪ ਅਡੰਡ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈ ਜੰਪਦ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭਾ ਜੈ ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਜੈ ਭੂਤ ਅਭੂਤ ਨਾ ਭੇਦ ਲਹਿ ਜੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਵ ਜਪੈ ਸੋ ਸਿੰਧ ਅਦੋ ਮੁਖ ਤਾਪ ਤਪੈ ਕਈ ਕਲਪਨ ਲਾ ਤਬ ਤਾਪ ਕਰੈ ਨਹਿ ਨਹਿ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਪਾਨ ਪਰੈ ਜੈ ਫੋਕਰ ਧਰਮ ਸਜੈ ਤਬ ਤਜ ਹੈ ਜੈ ਫੋਕਰ ਧਰਮ ਸਵੈ ਤਜ ਹੈ ਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਕੋ ਜਪ ਹੈ ਤਿਵ ਆਭੋ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰੈ ਭਾ ਭੂਲ

श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार। दोहरा कह जीतम का मरण है, कवन सुर कह नरक को सुगड़ा को मूर्ता, कहा तरगव तरक दोहरा को निंदा जत है, कवन कवन पाप का धर्म, कवन जो को भोग है, कवन कर्म अपकर्म। दोहरा कहो सुसम कासो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता, कवन कहो तंत को मंद दोहरा, कहा रंग राजा कवन हरक शोक है, कवन को रोगी रागी, कवन कहो तत मोह तवन दोहरा। कवन श्रेष्ठ को पुष्ट है, कहा श्रेष्ठ को विचार, कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार। दोहरा कहा कर्म को कर्म है।

प्रसाद दीरक तिरभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर विहंदन दोष निकंदन आदृते चंद्रासुर मारण पते दुधारण नरक निवारण गुड़ गते अच्छा अखंडे तेर प्रचंडे खंड डंडे अलख मते जय जय होसी मै कासुर मर्दन राम कपर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दोष निकंदन पोष्ट उडंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड मंडन धूम्र विध्वंसन महक मथे दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उदाहरण उर्दे जय जय होसी मै कासुर मर्दन राम।

भुजा फरंगे तेज परंग लंकुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन भी मर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके आसी झमके फुंग फनंग जय जय होसी मैं कासुर मर्दन रंभ कपर्दन दय जिनंग चंडासुर चंडन बुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण धुजा फरंकण फणी फुंकारण योधिते सरदार बिबरखण दुष्ट प्रखण दुष्ट प्रहरखण दुष्ट मते जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूम का तल उर्द अधे दामनी प्रहासन सोचव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्तासुर आचन ज्योत प्रमाचन निर्दय निराचन धर्म वृते सुरोणता जयंती अनल बेंती जोय जयंती खड़ग धरे जय जय हुसी मैं कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शत प्रहारण साध मते सैती सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज अतुलन जय जय हुसी मैं कासुर मर्दन भूम काल पताल जलन चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम त्रकार द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे कर्म प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होसी मय कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुंगरु घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शुद्ध सनाहे अगमथाहे एक वृते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद कुमार अगाद वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण विचल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल काश अनले संकटी निवारण अधम उधारण तेज प्रकरण तुन तबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तरक वितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरखण आद नील अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंत रंगण तेज सरे करकसा उठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके केहर लंके आद दंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसोम मथे बारण विलोचन वृतन विमोचन सोच विशोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुखसर नासे सुभ्रे सुभासे दोष ग्रसे चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनाद काद उर्धंग घंट का विराज रुणजन भाज्य भ्रम भय भाज्य सुन सुरंग कोकल समलाज किलबिक भाज्य सुखपराज मधुरंग दुर्जन दल दज्जय मंतन रिज्जय सवैन भजय रोरण जय जय होसी मय कासुर मर्दन चंड चक्रदन आदि गुरंग चातरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर पिते धूमराज विजुंसन प्रलय प्रजुंस जग विजुंसन सुध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आज उगाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आदनंगी अगाद गते ब्रिड राज विहंडन चक्षुर दंडन तेज चंडन आदृते सुर नर प्रत पारण पद धारण दोष निवारण दोग हरे जय जय होसी मय कासुर मर्दन विश्व विदन सं श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टाद बाण बोली बाण संज पनाहण गूढ़ गते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद नाद गाद वृते दुग दो ब्रह्मक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाहे दोष प्रदाहे अर्दल गाहे दोग हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आदंते जय जय होसी मय कासुर मर्दन सात प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुन मते अष्टाय चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आदवृते डुगडुगी दमंके बाघ बवंके भुजा फुरंके शुद्ध गते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आज उगाद नाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पते दुसारण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे पते उधारे मुंड मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन धूम्र विदुन संग आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दानव अर्दन बिडाल मधे सरदार विबरखन दुर्जन धरकन अतुल अमरखन धर्म ध्वजे धूमराज विधुंसन प्रसोनत चुनसन सोम निपाद सोम मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनिल अगाद कथे तो
ਕਹੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਦੜੀ ਛੰਦ ਤੁਮ ਕਹੋ ਦੇਵ ਸਰਬੰਗ ਵਿਚਾਰ ਜਿਮ ਕੀਓ ਆਪ ਕਰਤੇ ਪਸਾਰ ਜਦ ਅਭੂਤਨ ਭੈ ਅਨੰਤ ਦਹੁ ਕਹੋ ਜਤਾਮ ਤ੍ਰੈਣ ਤੰਤ ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਕਾਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਭੈ ਅਭੂਤਨ ਭੈ ਦਿਆਲ ਦਾਤਾ ਦੁਰੰਗ ਦੁਖ ਦੋਗ ਰਹ ਜੈ ਨੇਤ ਨੇਤ ਸਭ ਵੇਦ ਕਹਤ ਕਈ ਊਚ ਨੀਚ ਕੀ ਨੋ ਬਨਾਓ ਸਭ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਓ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਾਨੰਤ ਜਾਹੇ ਮਨ ਮੂੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੇਵੰਤ ਤਾਹੇ ਕਈ ਮੂੜ ਪਤ੍ਰ ਪੂਜਾ ਕਰੰਤ ਕਈ ਸਿੱਧ ਸਾ ਸੂਰਤ ਸਿਵੰਤ ਕਈ ਪਲਟ ਸੂਰਤ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਰੂਪ ਵੈ ਕਹਿ ਲਖਾਏ ਅਨਛਿਜ ਤੇਜ ਅਨਭੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਤਾ ਦੁਰੰਤ ਅਦਭੈ ਅਨਾਸ ਸਭ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਤ ਰੂਪ ਅਨਭੈ ਅਕਾਲ ਅਛੈ ਸਰੂਪ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕਾਮਲ ਕਿਰਪਾਲ ਦੁਖ ਦੋਖ ਹਰਤ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਅੰਜਨ ਵਿਹੀਨ ਅਨਭੰਜਨਾ ਜਲ ਥਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਬਤ੍ਰ ਸਾਰ ਜੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਭਰਮ ਜੈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਏਕ ਧਰਮ ਜੈ ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋ ਏਕ ਸਾਰ ਅੱਛਾ ਸਰੂਪ ਅਭਿਚਲ ਅਪਾਰ ਜਾਨੀ ਨਾ ਜੈ ਜੈ ਰੂਪ ਰੇ ਕਹਿ ਬਾਸ ਤਾਸ ਕਹਿ ਕੌਣ ਫੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਤਾਸ ਹੈ ਕਮਲ ਜਾਤ ਜੈ ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ

दीन दयाल दयानिद दोखन देखत है पर देत न हरे। दाहत है दुदोखन को दल दुजन के पल में दल डारे। खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके पद मापद भेद कते अभेद उचारे। रोजी ही राज लोग राज रोग रोहान की रो।

जवां काहे रे मंचत वह उदम जा आहर हर जियो परिया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहा जन पिता लोक सुतवंता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड़ आवे सैकु सा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया

समूह साध संगत जी नूं बेनती है, पहला प्रकाश सेवक जत्थे वल्लों धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश गुरपुरब दे खुशी विच अज मिती 7 तरीक तों 11 तरीक तक रोज रात 8 बजे श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ किए जाणगे। सो समूह संगतां नूं बेनती है, हाजरियां भरो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

0: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम
1: भजना के मन विश्राम रहा।
0: प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे,
1: प्रभ के सिमरन दुख जब न से,
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे,
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे,
0: प्रभ सिमरत कज बिघन लागे,
1: प्रभ के सिमरन अंधिन जागे,
0: प्रभ के सिमरन भवन व्यापे,
1: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे,
0: प्रभ का सिमरन साध के संग
1: सर्व निदान नानक रंग,
0: प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निद,
1: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान अद्भुत,
0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा,
1: प्रभ के सिमरन बिनसे दूजा,
0: प्रभ के सिमरन त्रिदिश नानी,
1: प्रभ के सिमरन धर्म मानी,
0: प्रभ के सिमरन होए सो भला।

0: तृष्णा बुझे
1: प्रभु के सिमरन सब की सूझे
0: प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा
1: प्रभु के सिमरन पूरन आशा
0: प्रभु के सिमरन मन की मल जाए
1: अमृत नाम हृदय माहे समाए
0: प्रभु जी बसे साध की रसना
1: नानक जन का दास न दसना
0: प्रभु को सिमरे से धन बनते
1: प्रभु को सिमरे से पद बनते
0: प्रभु को सिमरे से जन परवान
1: प्रभु को सिमरे से पूरक प्रधान
0: प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे
1: प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरे से सुखवासी
1: प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी
0: सिमरन ते लागे जन आप दयाला
1: नानक मन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरे से परोपकारी
1: प्रभु को सिमरन ते सत बलहारी
0: प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे
1: प्रभु को सिमरन ते सुख बिहावे
0: प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता
1: प्रभु को सिमरन तिन हार जीता
0: प्रभु को सिमरे तिन नंद घनेरे
1: प्रभु को सिमरे बसे हर मेरे
0: तन कृपा ते अनदिन जाग
1: नानक सिमरन पूरे
0: प्रभु के सिमरन कारज पूरे
2: प्रभु के सिमरन
0: हर गुण बानी
1: प्रभु के सिमरन सह समानी
0: प्रभु के सिमरन न चल आसन
1: प्रभु के सिमरन कमल भी

0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग भेद उपाए,
0: हर सिमरन वैस जति दाते,
1: हर सिमरन नीचा कुण जाते,
0: हर सिमरन धारी सब धरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन कियो सगल कारा।

0: भाते
1: नहीं तुम राम नाम विचार
0: गुरमुख नाम जपे तुम्हार
1: नौखण्ड पृथ्वी फिरे सिर जीवा
2: अगल माय।

0: के नाम के प्रिय सुखदाई
1: कर कृपा नानक आप लय लाए
0: चंदन कुटुंब सब आया
1: मिथ्या हो में ममता माया
0: राज्यो बंधन माल
1: मिथ्या काम क्रोध निग्रह
0: रत अस्त्य अश्व वस्त्र
1: मिथ्या

0: प्रसाद सुगंध तन लावे
1: इसको सिमरत परम गत पावे
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर
2: जय प्याय सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
2: सिमरत
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ते आये क्या वचन।

0: प्रसाद अरो कंचन देई
1: लेवला तुझ राम सुनेहि
0: प्रसाद तेरा उल्लारत
2: मान सुख पावे हर हर जस कहत
0: प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके
2: मान

0: भगत करे।
1: जय प्रसाद अब कन पैरी जय
0: मंत्र सिमरत क्यों आलस की
1: जय प्रसाद अस्त अस्तवारी
0: तिस प्रभु को कबो ना बिसारी
1: जय प्रसाद बाक मिलक धना
0: राग परोई प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बनत बनाई
0: उठा बैठ सत से ध्याई
1: से ध्याई जो एक अलको
0: यहां नानक तेरी रखे
1: जय प्रसाद करे पुन

0: प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सहज बसना,
0: जय प्रसाद असत कर चले,
1: जय प्रसाद संपूर्ण बोले,
0: जय प्रसाद परम गत पावे,
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे,
0: ऐसा प्रत्याग और कत लागू,
1: गुरु प्रसाद

0: जब सोए
1: आप जपाए जपे सो नाम
0: आपको आसो हर गुण गाओ
1: कृपा दे वही प्रकाश
2: प्रभु दया से कमल के गास
1: सुप्रसन्न बसे मन।

0: चतुरज कथा
1: अष्टपति
2: साध के संग मुख जल होता
1: साध संग मन सखी होता
2: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रत्ये सो
2: साध के संग बुझे प्रभु निरा
1: साध संग

0: साधु के कुर्बान,
1: साध के संग सबको लुधार, साधु के संग शोधन पावे,
0: सबको वरसावे,
1: संग धर्म राय करे सेवा,
2: साधु
1: के संग पाप लाए,
2: संग अमृत गुण गाए,
1: संग सर्व दान गम,
2: साध के संग सफल जन,
1: साध के संग नहीं किछ काल, साध के संग लोगत हरे,
0: साध के संग नरक पर हरे,
1: साध के संग यह हुआ सुहेला,
0: साध संग विचरतर मेला,
1: जो इच्छे सो ही फल पावे,
0: साध के संग न बिरता जावे,
1: साध रत बसे,
0: नानक गुरे साध सुन बसे,
1: साध के संग सुनो हरे।

0: की सबु परमया
1: ब्रह्म ज्ञानी देख जो बुरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान।

0: पाए धर्म
1: नानक जिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: मन पार्वन का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: राम किस नदरी आये
1: दंत संतन पाए तिन पाया
0: निकट निकट हर जान
1: सो दास दल गए परवान
0: दास को कृपा करे।

0: तबो
1: सिट
0: हस्त पतंग होए
1: जिया
0: स्वागी दिखावे
1: जो प्रभावे तिवे नचावे
0: ज्योतिष पावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए
0: साध संगते।

0: जाता मिटे अभिमान,
1: सोचन नाना दरगह परवान,
0: और कर्म करे हो तारे,
1: धर्मावे सगले बिरथारे,
0: तपस्या करे अहंकार,
1: नरक सुर

0: करावनार प्रभजने
1: बसे बाहर भी ओही
0: नानक दर्शन देख समोई
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभते सगले उत्पत्त
1: इस भावेता करे
0: विस्थार इस भावेता एक
1: कला लखी नह जाए
0: इस भावे तिस रहे मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिए।

0: जी गुरु गरीब निवाज अंतर जामी सदगुरु सचे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र ताम तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे सचे पातशाह जी महाराज पहले प्रकाश सेवक जथे वलो साध संगत जी वलो सचे पातशाह जी महाराज श्री सुखमनी साहिब श्री चौपी साहिब ते अमृतमई शब्द कीर्तन होया दातार जी बाणी पढ़द्या हुईआं भुल्लां च कांदी बाबी बखशनी बड़ी सुनी बाणी सच खंड विच प्रवान करनी बाणी दा महात्म आप जी दे साजियां निवाजियां समूह संगतां दे ताई बखशना संगतां दे आस मनोरथ पूर्ण करने नाम दान गुरसिखी जन देह रोगता तंदुरुस्तियां बखशनियां नाम बाणी नाल रखना शीस ते मरा भरा हथकना सचे पातशाह जी महाराज पहले प्रकाश सेवक जत्थे ते शीस ते मरा भरा हथकना आप जी दरगर दी चढ़दी कलावी सेवा करन दा बल बखशना हर मैदान फतेह करना आप जी दे हजूर आनंद साहिब जी दी अरदास आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी दे हाजर है आप जी नू भोग लगे भोग लग्या प्रसाद संगतां नू मिले जो छके सो आप जी दा पावन पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे सुख होवे नाम चित आवे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे त्रबदा भला अज्ञा भय
1: गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी अर्जन गुराखी दे जो प्रभ को मिल भोज है वो शब्द मैंने राज करेगा खालसा आखी रहे न कोए पार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो हो वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे गुरबार उतारन हार राजा के हाथ में कलगी सोए शीस सो हमरी रक्षा करे गुर कलगी धार जगदीश सो हमरी रक्षा करे गुर कलगी धार जगदीश
0: बोले सोन्या
1: शास्त्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत आजूनी साहेब अंगुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी

एम अंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहेब अंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।

प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह अंगुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु बैठो वाहे गुरु दो मिनट बैठो। सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु लगन है लगन। सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु